रहा अर्जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यासे हर हर नाम मिलाए तृप्तस है मिल संगत गुण प्रगासे जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिक जीवे त्रिक जी बासे जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासो धन धंड सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगासो रागू जरी महला पंजवा काहे रे मन चितवै उदम जा आहर हर जी उपरिया सैल पत्थर मह जंतु पाई ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जानन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काही मन पह करिया ऊडे उडया वैसे कोसा तिस पाछा बचरे छरिया तिन कमन खलावै कमन चुगावै मन मह सिमरन करिया सबन धान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा भरिया रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सत गुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्यावै तुजी हर सच्चे सिरजन हारा सब जीत माड़े जी तू जिया का दाता रा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सरम निरंतर जी हर एक पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवा है जो सेवा है तुद जी जा नानक तिन कुरबाना हर त्यावै तुद जी से जन जुग मह सुख बासी से मुक्त पय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सालाहन तू जी हर अनका ने कानंता तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेको पढ़ है बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे है मेरे हर भगवंता तू आद पुरखे अपरंपर करता जी तुझे बड़े अवरण कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई
ਖੁਦੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਜੇ ਸਭ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਾਈ ਕਾ ਜਨੋਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੋ ਮੈਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹੁਣ ਪਾਈ ਰਹਾਓ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਦੇ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਵੋ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਦ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰਣ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖ ਜਨ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਡੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹ ਕੀਆ ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ

अच्छा सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते तुमरी गात मित तुम ही जानी ना

देहो सज्जन असी सड़िया जो होवै साहब सिओ मेल कर कर एहो पहुँचाओ सदड़ नित पवनो सदण हारा सिमरिया नानक सिध अवन राग आसा मोहला पहला छे घर छे गुर छे उपदेस गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय प्रकृति कीर्त होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्व चसिया घड़िया पहरा तिती बारी माह होवा सूरज को रुत अनेक नानक करते कीर्ति तेरे सो राग तनात्री मोहला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप माले अनुपम चमल करे सगल बन राए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडा तेरी आरती अनहता सदवा जंत फेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत ननायक तोई सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानण सब मह चानण होए

आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिन मोहे आहि प्यासा कृपा जल देहे नानक साधु को होए जाते तेरा न वासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ सकत हर साधन जाने उतने अंतर हो मैं कंडा है ज्यों ज्यों चला चुबह दुख पावे है जम काल सह सर डंडा है हर दिन हर हर नाम समाने दुख जन मरण भव कंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेसर बोह सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर रात रात बड़ वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा है रा गौड़ी पूर्व महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत हल्की वेला इहां खाट चलो हरला आगे बसन सुहेला औद कटै जिसना नारे मन गुरमिल का सवारे रहाओ ये संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगह पिया वह इह रस कत कथा तिन जानी जाको आए सोए बिहाजो हर गुर ते मन बसेरा निज घर महल पव

नमस्तं निरतापे नमस्तं थापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं सर्गे नमस्तं परभोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं रंगे नमस्तं पंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तास्त्रमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं जाते नमस्तं पाते नमस्तं मजबे नमस्तास्ताजबे अदेशं अदेशे नमस्तं पेशे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवै नमस्तं पेहवै नमस्तं अजन्मे नमस्तं सोपानमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु दयाले नमस्तं वर्णे नमस्तं मरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्ता बन्दे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं क्रीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तुरागे नमस्तं स्वाहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वत्प्रसाद रूप है नूप है जू है पू है लेख है पेख है नाम है काम है ते है पे है जीत है पीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है स्वर्ग है अनिल है नाद है जे है अजाद है जन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है गंज है पंज है अचूज है चंज है मीक है रफीक है तंद है बंद है निर्भूज है सूज है अकाल है जाल है लाह है जाह है नंत है महंत है लीक है निरश्रीक है निरलंब है संभ है अगम है जम है भूत है छूत है लोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है बाह है गाह है मान है निदान है नेक है फिर एक है भोजंग प्रयात छंद भोजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे पेखी पेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सुवरं परम रूपे नमो जोग जोगे सुवरं परम सिद्धे नमो राज राजे सुवरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे सुवरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवे सोतर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो कूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता दोर दर्दं अगं ओगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं छेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तस्तामं तेरा जो चाचरी छंदा जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं पोजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तवं निर्नाथे नमस्तवं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे
नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्यंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिजे कृपालं स्वरूपे कुपरमं प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी चतुर छंद प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं लख करमं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूवाल छंद त्वप्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजौन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव पेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराजहि अवधूत रूप रसाल नाम धाम न जात जा कर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजौन आद असेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र देशा विसा हुए फैले अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनांत को फिरे दे पेव न जान ही जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात पास हो जान ही केह जेब तात्मात न जात जा कर जन्म मरण विहीन चक्कर बकर फिरा चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिख जग जप ही जेह जाप आद देव अनाद मूर्त थप्यो सब जेह थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व बिस्व रचियो संयम भव गण पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख देश तरन ताम सो परम रहत भूत अलख भेस अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व दायक सर्व गायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जान ही जेह रूप रंगार रेख परम वेद पुराण जा कह नित भक्त नित कोट सिमरित प्राण शास्त्र नाव ही वह चित मद भार छंद प्रसाद गुण गण उदार महिमा पार आसन भंग उपमान अंगन भव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बा

सदांग संगे अपंगं विपुते। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वे प्रसाद सुवइये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख प्रयोग कर जोग जति के। सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्धा अधिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे मत को न देखिए प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते करति बिनय करति के। माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदता पावन के गौन कव जात निवारे। पारी कुजान के भूपली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे। एते पाए तो कहा पाए भूपता अंत को नंगे ही पाए पधारे। जीत फिरा सब देश देशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत कूड़क जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे। श्री पात श्री भगवान भजे बिना अंत कवंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दमदान सो संजम ने मन एक बसेख है। वेद पुराण देव कुरान जे मीन जमान सबान के पेख है। पौन आहार जति जत तार सुबह सुबिचार हजार देख है। श्री भगवान भजे बिन भूपता एक रति बिन एक न लेख है। शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाहा सुसाज सनाहा दुर्जान दलैंग। भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हल्ले न हल्लैंग। तोरारी मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंग। श्री पा श्री भगवान कृपा बेना त्याग जहान निदान चल लैंगे। वीर पार बड़े बरियार बचार है सार की तार पछैया। तोरत देश मलिंद मवासना माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चकचार लवैया। साहिब श्री सबको सिर नायक जाच कनेक सो एक देवैया। दानव देव निंद निसाचर भूत भविख भवान जपैंगे। जीव जीते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थप थपैंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुना पापन के बहु पुंज खपैंगे। साध समूह प्रसन्न फिरा जग सतर सबैव लोक चपैंगे। मानवेंद्र गजेंद्र नराद पजान त्रिलोक को राज करैंगे। कोटे स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरैंगे। ब्रह्म महेश्वर बेसन सची पत अंत फसे जम फास परैंग। जे नर श्री पत के प्रास हैं पाग ते नर फिर न देह तरैंगे। कह पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे वक्त ध्यान लगायो। नात फिरयो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पिछाह को शीश निवायो। को बुतान को पूजत है पास को मेरे तान को पूजन तहयो। पूर क्रिया और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पाए।

बुतान को पूजत है पास को मेरे तान को पूजन तहो पूर क्रिया और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पातशाही दसवीं कबेबार बेनती चौपाई हमरे करो हाथ दरक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबा तुम काव हो आप हास द मोहे बचाव हो सुखी बसा मोर परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज करदा करी है सब बैरन कौ आज संगरी है पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवरना त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दा मुझा बरी है मरण काल का त्रास निवरी है जो सदा हमारे पछा श्री अस्तुजू करी है हो रक्षा राख ले हो मोहे रख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बेसन प्रकाशा सगल काल का किया तमासा जमन काल योगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत चिट्टी ते पुंचरा स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाना कट कट के पट पट की जाना जा बुद्ध करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलता देह तर सब हूँ जेते बदना श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझो चारा तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेदार आलम निरंकार निर्विकार निरिलंब आद नील नद संभ ताक मूढ़ चार्त भेदा जा को भेद न पावत बेदा ताक कर पाहन अनुमानत मह मूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार कचीनत न पहब आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुहे तेती तुमरा लख न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पज खान बहुर रत दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आजुगा सुख संयम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगर हो दुष्ट जिते वत पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संगत सुतारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरंत काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहारि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा
ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤੇ ਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦਾ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਖ ਦੁਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਪਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਂਛ ਪ੍ਰਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੂਹਨਤ ਸਭ ਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋਈ ਆਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤਲਾ ਚਿਤਪਤਾਵਈ ਦੂਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਣਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਾ ਹੈ ਸਹਿਸ ਪਣਜੈ ਸਹਿਸ ਪੁਨਤੀਨ ਕਿਹਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਧੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ ਤੀਰ ਸੁਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸੁਬਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਪ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਪ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਦੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ

नदरी कर्म गाय पार कोल चरका चक्की चक ताल बार वाले बहुत अनंत लाटू मधानिया नंगा पंखी पौंदिया लैना सा सुगा चाट पवाई जंत नान पौंदा गलत नंत बंधन बंत पवाए स्वय पै करत न सब कोई

हम जता हम चलाया हम खटे हम चाया हम सचार कूड़े यार हम पापन विचार हम नरसुर अवतार

पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेते आरजा पड़ी है जेते सास

निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो, हम बालक तुम रे तारे, जेह बाएक कवन गुण कहिए।

खंडहो अनक विधि समझावहो हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखावहो तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाय। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाय। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हौ जाना अखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई।
1: तीर्थ नावा चेत पाव भिन पाने के नाय करी। जेती सरटू पाई वेखा वेण कर्मा के मिला लई। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख

मन कोई मन सुरत होवै मन बुध मन सगल पवन की सुथ मन मोह चोट न खाए मन जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ स्यो प्रगट जाए मन मग न चले पंत मन धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन होए

मत निरंकार असंख्य जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राय उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर महो पखसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन का विचार वारा न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कुड़े फिराहे असंख मलेश मल भख कहे असंख निंदक सर करह भार नानक नीच कह वि

भावना हारे केते राग परिसो कहियन केते गाव नहारे। गाव है तोहनो पौन पानी वैसंत्र गाव है राजा धर्म द्वारे। गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे। गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे। गाव है इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले। गाव है सत समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सति संतोखे गाव है वीर करारे। गावन पंडित पंडर केसर चुग चुग वेदा नाले। गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले। गावन रत्नो पाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले। गाव है जोत महाबल सूरा गाव है काणी चारे। गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे। सही तुतनो गाव है जो तुत पावन रते तेरे भक्त रसाले। होर के ते गावन से मैं चित नयावन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साचे नाई। है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर विकह कीता अपना जेवत सी वड्याई।

सौ सजाने लसी भस्मल पाई रे राम को चित लाई हर जस वकर लै चलो सौ देखा पति आय राव जिना रास ना सच है क्यों तिना सुख होए खोटा वण जवण जै मंतन खोटा होए पाई पति मृग जो दुख नो नित्रोए खोटे पोता ना पवै तिन हर गुर दर्श न होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे कोट कमावना गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै सब सला राम नाम रंग रत्ते अपार ना परम तिना हर जप लाय अगला निरपोर मन मा सराग महला पहला कर दूजा तन जोबन यार फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार पवन केरे पत ज्यों ढल ढोल जमुनार।

जो लहराओ सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान हम पी वंजा डुमनी रोवा चीनी बाण की ना सुने ही गोरी आपन कन्नी सोए लगी आवे सावरा नितन पिया होए नानक सुती पिया जान विरती सन गुणा गवाई घंटड़ी अवगन चली बंसराग मल्ला पहला कर दूजा आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे हो वै चोलड़ा आपे सेज पथार रंग रत्ता मेरा साहिब रव रया भरपूर राव आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मण कड़ा आपे अंदर लाल आपे बावद रंगला सखी मेरा लाल नित रवै सुहागनि देखा मारा हाल प्रण वै नानक बेनती तू सरवर तू हंस कौल तू है कविया तू है आपे विख विकस सिराग महला पहला करती जा यो तन धरती बीज कर्मा करो सलल अपाओ सारंग पानी मन किरसान हर दस माला यो पावस पद निर्बाणी काय गर्वस मूड़े माया पिछ तो सगल कलत्र माता तेरे होए ना सकाय राव भिखा बेकार दुष्कृका करे इन ताज आत्मा हो त्याय जब तसन्न होए जब राके कमल विकस मदा श्रमाई बीज सप्ताह हरो बासरो संग्रह तीन कोड़ा नितकाल सारा दस अठार में अपरंग परो चीन कह नानक वेख तारे सिराग महला पहला करती जामल कर धरती बीज शब्दो कर सच किया निते पानी होए किसानी मां जमा लै पिस दोषक मुड़े बचानी मत जान सा गली पाया माल कह मन रूप सुवैत विधि जन्म कवा राव ऐ तन चिकुड़े तन मीट को कमल की सारनी मूल पाई भौर उसनित पाके बोले क्यों बूझे जा न बुझाई आकर सुनना पाउन के बाणी ये मन रता माया खसम की नजर दिला पसंदे जिन्नी कर एक ते आयती कर रखे पंच कर साथी नौ सतन मत कर जाई नानक आके राह पे चलना माल तन की तू संजय सराग अल्लाह पहले कर चूता सोई मौला जिन जग मोलिया हर के संसार आप खाक जन बंद राय तन सजना हर मरना मुला मरना फिक्र तर उड़न राव ता तू मुला ता तू काजे जान नाम कदाए जे बहुत तेरा पड़ा हो गया कोरा न भरिए पाई सोई काजे जिन आप तैक नाम की आया धार हो गया पी उस जाने जासे सचा सिर और पंज भक्त निवाज गुजारे पड़क ते पुराना नानक आख्या गोर सदे रहे पीना खाना सराग मल्ला पहला कर चौथा एक स्वान दो स्वानी नाल भलके भौके सदा बयाल कूड़ छुरा मुट्टा मुरदार धान गुरू भरा करतार मैं पत की पंधना करनी की कार हम बिगड़ा रूप राम बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं यह आस एहो आधार राव मुख निंदा आखां दिन रात पर घर जोही नीच सनात काम करो तन वसा चंडाल तान गुरु राम करतार भाई सुरत मलुकी वे सौंट गवाड़ा ठगी देस करा सयाणा बहुता भार तान गुरु राम करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मुख देसा दुष्ट चोर नानक नीच कह विचार तान कुरूप रा करतार श्री राग महला पहला कर चौथा इका सुर चित जी सुरत बिगना कोई न की जय सुरत अतन राव ले कह को आव जाओ काहे जी कर चतराई लेवै देवै ढिल न पाए राव तेरे जिये जिया का तोहे कित को साव्या वै रोहे जे तू साव्या वै रोहे तू ओना कह तेरे ओहे असी बोल बिगाड़ बिगाड़ बोल तू नदरी अंदर तोल न तोल जय करनी त पूरी मत करनी बाजो घटे घट प्रणत नान ज्ञानी कैसा होए आ पछाणा बूझा सुगुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगह परवान सराग महला पहला कर चौथा

पास आपे नेड़ा दूर आपे आपे मंजमिया आपे विकस आपे ही कुदरत करे जा आनंद ज्योत सुभावर नानक हुकम सोई परवा अनुसराग मल्ला पहला कर चौथा कीता कहा करे मन मान देवना हरे क्या हत दान पावा दे न दे सोई कीते क्या कहया क्या होए आपे सच पावा ते सच अंधा कच्चा कच निकच राव जाके रुक बिरकया राव जही तात्या तिन्नो फुल पाव पल लिखा पाए आप बीज आपे काय कच्ची कंध कच्चा विचराज मत लूनी पिका सा नानक आने आवा रास बिरनावर नाई सा वास सिराग महला पहला कर पंजमा अछल छलाई न चले न कहो कटारा कर सके ज्यों साहेब राख्या त्यों रह सलो बिका जीव टल पला बिन तेल दीवा क्यों जल राहो पोती प्राण कमाई पौ वटी तन पाई सच भोजन जलाइए तेल दीवा इं जल है कर चानन साहिब तो मिला राव इत तन लागे बाणिया सुख होवे सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाइए तां दरगह बैसन पाइए कहो नानक बहाल उडाइए श्री राग महला तीजा कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद आओ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्था जिस मंदिर बुझाए मन चिंदया वर भावना जो चे सो फल पाए नौ त्याई नौ मंगे नाम सह समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्हें गुरमुख चाख ऐसा जे रिस मारो जिन्हें सतगुर सेवा तिन्हें पाया नाम निधान अंतर आर रस रव रहे आ चूका मन अभिमान हृदय कौन प्रगासा लागा सच ध्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगह मान सतगुर सेवने अपना ते बिरले संसार हमें ममता मार कर रखे और धारा तिनका बला हर जिन नाम लगे प्यार सही सुखे चौ जुगे जिन नाम अकुट पार गुर मिले न पे चुके मुख प्यास हर चेती मन रब रहा घर माए उदास जिना नार गणतरी पाई है सतनाम गुणता सिराग मल्ला तीजा बहुपे कर प्रभाई मन हृदय कब कमाए हर का मैल न पावी मर विस्तम मन समाए मान रे ग्राही माए उदास सत संजम करनी सुख रे गुरमुख कोई प्रगास राव गुर क्या है शब्द मन जित त्यागत मुत कर हमें पाए और का नाम थे ये सत संत मेल मिलाए जय लाख स्त्रियां पो करे नवखंड राज कमाए बिन सतगुर सुख न पावई फिर प्रजनी पाए हर हार कंठ जिनी पैरिया गुरचरनी चित लाए तिना विचारित सिद्ध फिराए होना तिल न तुम्हाए जो प्रभाव है सोती अवर न करना जाय जन नानक जीवन नाम लाए हर देवो सह सुपाए श्री राग महला तीजा कर पहला जिसे के सरकार तिसी का सब कोई गुरमुख कार कमावनी सच घट प्रगट होए अंतर जिस कै सच वसा सचे सची सोए सच मिले सेना विछड़ाए तेंडे कर वासा होए मेरे राम है हर बने अपना को सत गुरु सच परम निर्मला सब मिला बाहु राव सब मिला सो मिल रहा है जिसनो आपे ले मिला दूजा पाए को ना मिला फिर प्रयावा जैसा मैं एक वर्ता एक कोर्या समाए जिसनो आप दयाल हो सो गुरमुख नाम समाए पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की बात करे विचार मात बोध भगना पुजे अंतर लो विकार लाख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम हो एक वार पूर्व लिखा कमावना कोई न मिटनार सतगुर की सेवा गाकड़े सिर दी जाए आप गवाए शब्द मिला तार मिला सेवा पवे सब तय पारस परस पारसो ज्योति जो समाए जिन को पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलाया मन भुखा भुखा मत करे मत तू करे पुकार लख चौरासी जिन श्री सबसे आधार निपो सद आला सब करदा सर नानक गुरमुख बुझिया पाइया।

मन मेरे सदार भेखा दूर, जन्म मरण दुख परा रह सब रह भरपूर राव। सच सलान से सच्चे सच्चा नाम उदार, सच्ची कर कमावनी सच्ची नाल प्यार। सच्चा सौ वर्तला कोई न मिटनार, मन कमैल न पानी खूब मिट्टी कुड़ियार। हम करता जग मुआ गुरबन को रमदार, माया मोह विसर दुनिया सौदाते दतार। सतगुर सेवा ता उबरा सच रखे उतार, कृपा ते अर पाई सच सौ विचार। सतगुर सेव माने निर्मला मैं तज विकार, आप छोट जीवत मरा गुर का सब विचार। तन दत्ता तरह के लाग सच प्यार, सच रते सात रते मुखुजले ते सच दरबार। सतगुर पुरख न मन्यो सब न लगो प्यार, स्नान दान जेता करो दूजा भाई कुहार। हर जीव अपनी कृपा करे तन लागे नाम प्यार, नानक नाम समाप्त गुर कहे उबार। सराग महला तीजा के सौ से भी क्या जाप करे, सतगुरु पूछो जाए। सतगुरु का पाणा मन ले बिचों आप गुआई, हर सेवा चाकरी नाम समन आए। नाम ये ते सुख पाई है सच्चा सब सुहाई, मन मेरे अंदर जा घर चित अपनी खेती रख ला कुछ पड़ा की खेत राव। मन की अच्छा पूरी सब रह भरपूर भै पर भगत, करा दिन रात वर जो विकस सदा दूर। सच्चा सब सदा मन रात भरम गया शरीर दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुण गिर जो जागे सुबर सुते गे मोहाए। सच्चा सबन पछाण सुपना गया विहाय, समझे कर का पावना जो आया तुम जाए, मार को जन्म बरता गया क्या मुँह देसी जाए। सब किसा पे आप है मैं सब बेचे कह न जाए, गुर का सर पछाणी दुख मैं बिचों गवाए। सतगुर से बने अपना तिन कर लागू पाए, नानक दर सच्चा सियार है तिन बुलार जाओ। सराग महला तीजा जे वेला वक्त उचारी तो कित वेला भक्त हो, अंदर नाम मेरा त्यो सच्चे सच्चे सोई तिल प्यारा बिसरा। भगत के नहीं हो मंत्र से तिल सास सास ना बिरता कोय, मेरे मन हर का नाम त्याए साची भक्त ताती है जा हर बस मन आई राव। सहजे खेती राई है सच नाम बीज पाए, खेती जमी अगली मन में रजा सस पाए। गुर का सद अमृत जित पीत दिख जाए, हे मन साचा सतरता सच रहसमाय। आखन वेखन बोलना सब दे रहसमाय, बाणी बजी चो जुगे सचो सच सुनाए। ओ मैं मेरा रह गया सच्चा ले मिलाए, तिनको मेल अधूर जो सच रेले बुलाए। नदरी नाम त्याय बिन बिन कर्मा पाए न जाए, पूरा भाग सतसंगत ला सतगुर पेटा जिस अंदर नामे रत्या दुख विख्या बिचों जाए। नानक सद मिला बड़ा नामे नाम समाए, सराग महला तीजा अपना पावतन पाए। उन जिन गुर का सब विचार सत्संग सदा मिल रही सच्चे के अनुसार, दोदा मैल चुकाई न रखे और उतार। सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हूं मैं मैल पर नाल। हर निर्मल सदा सोना सब सवरण हर राव, सच्चा सोद मन मोया प्रभ पेले मिलाए। अंदर नाम मेरे ज्योति समाए, ज्योति प्रभ जापता बिन सतगुर भूजना पाए। जिन को गुरु लिखया सतगुर भेटिया तिन आए, बिन नाम सब डूंगनी दूजा पाए खुआए। ਅਤੇ ਸੁਭਨ ਕੜਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵੇ ਆਏ, ਪਰ ਪੁੱਲਾਂ ਅਨੰਤ ਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁਕਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਾਪ ਪਾਪ ਮਮ ਦੇ ਪਾਪ ਪਚਾ ਪਛਾਏ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਭੋਜਨ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਵੇ ਕਾਲੇ ਸੂਰੇ ਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਰੋਗ ਨਾ ਤੁੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਨਾ ਮੈਂ ਰਸ ਸਮਾਏ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਪਾਈਏ ਬਿਨ ਸਬਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਮਨ ਰਿ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏ ਰਾਵ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਵਰਤਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਸਲਾਹੀ ਮਨ ਵਸ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੁਖੋਏ। ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਜੈ ਭਾਵ ਤੰਦੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਸਵਾ ਗਣਤ ਗਣਤਾ ਨੋ ਸੁਖ ਨਾਏ। ਵੇਕੇ ਕਰ ਕਮਾਵਨੀ ਵੇਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਏ, ਬਿਰ ਨਾਵੇ ਟੋਰ ਨਾ ਪਾਇਣੀ ਜੰਪੁਰ ਦੁਖ ਸਹਾਏ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਤਾ ਤਿਸਾ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਜੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਤੁਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਸਰਾਗ ਮਨ ਲਾਤੀ ਜਾ ਤਿਨਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਗੁਰਸਦੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਗੁਣਗਾਰਾ ਸੱਚ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੋਂ ਭਗਤ ਪੰਡਾ।

जाए। गुरप्रसादी मन वसै मल होमै जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बालीऐ त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए। हम किया हम करेंगे हम मूरख गावार, करने वाला विसरिया दूजै पाए प्यार। माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार, गुरमती सुख पाई है